0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजा भौतिक जगत में नहर नारी ले प्रगति पथ को।

がりかな。へらまへらまへらまい。पांचवा पांडव भाई और के भाई भाने देखी उतापकी परमात्मा 36 वर्ष पछाड़ी राज्य उन्हीं